हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल। संत तुलसीदास की ये रचना प्रस्तुत है मन्ना डे के स्वर में। बोल तहिते आयो शरण सवेरे।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल है। लीजिए सुनिए आलोक गांगुली के स्वर में ब्रह्मानंद की ये रचना, सुनो सुनो ध्यान से प्यारा।

0: कोट भंडारा सुनो सुनो ध्यान से प्यारा ओ बागत कोट नकारा सुनो सुनो ध्यान से प्यारा।
1: आप सुन रहे थे भारतीय संगीत का रागम डीटीएच चैनल, हर पल हर दिन भारतीय संगीत।

0: You are listening to vocal recital by Shri Kumar Mardur. He was accompanied on tabla by Shri Uday Kulkarni and harmonium by Shri Shrikant Kulkarni. Continuing the concert, now listen to tabla solo by Pandit Raghunath Nakod. Taal, teen taal.
1: आप सुन रहे थे श्री कुमार मडूर का गायन. आपके साथ तबले पर श्री उदय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री श्रीकांत कुलकर्णी साथ दे रहे थे. कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे पंडित रघुनाथ नाकोड़ का तबला सोलो. ताल तीन ताल.

ಗೆಂದದ ಗೆಂದದ ಗೆಂದದ ಗೆಂದದ ಗೆಂದದ.

0: You were listening to Tabla Solo by Pandit Raghunath Nakod. He was accompanied on violin by Sri Shankar Kabadi. This program was contributed by Akashwani Dharwad, Anytime Indian Music.
1: अब तक आप सुन रहे थे पंडित रघुनाथ नाकोड़ का तबला सोलो. आपके साथ वायलिन पर श्री शंकर कबाड़ी साथ दे रहे थे. यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ द्वारा पेश किया गया.

0: This is Ragam 24/7 DTH, Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आज के इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत प्रस्तुत है राग बिलास खानी तोड़ी में ख्याल गायन. आज के हमारे कलाकार हैं मोहन सिंह अंगूड़ा. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सत्यव्रत चट्टोपाध्याय और हारमोनियम पर रथिंद्रनाथ चक्रवर्ती. तो आइए सुनते हैं राग बिलास खानी तोड़ी में ख्याल गायन. कलाकार हैं मोहन सिंह खांगूड़ा.
2: हेलो एंड गुड मॉर्निंग. दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल. लिसन टू अ ख्याल इन द राग बिलास खानी तोड़ी. Our artist this morning, Mohan Singh Khangura. The accompanying artists are Satyavrata Chattopadhyay on the tabla and Rathindranath Chakraborty on the harmonium. Listen then to a khayal in rag Bilas Khani Todi. Our artist is Mohan Singh Khangura.

0: आज के इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे राग बिलास खानी तोड़ी में ख्याल गायन। कलाकार थी मोहन सिंह खांगूड़ा। आपके साथ तबले पर संग कर रहे थे सत्यव्रत चट्टोपाध्याय और हारमोनियम पर रथिंद्रनाथ चक्रवर्ती। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आइए अब सुनते हैं तबला वादन। तीन ताल प्रस्तुत करेंगे अशोक कुमार मोइत्रा। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं प्रशांत सिन्हा। तो आइए सुनते हैं तबले पर तीन ताल, कलाकार हैं अशोक कुमार मोइत्रा।
1: यू आर लिसनिंग टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल, अ ख्याल इन राग बिलास खानी तोड़ी। आवर आर्टिस्ट वॉज मोहन सिंह खांगूड़ा। Accompanying the artist was Shottobrata Chattopadhyay on the tabla and Rothindranath Chakraborty on the harmonium. This is Ragam, 24/7 on DTH. Anytime Indian music. Continuing our morning concert, now listen to a Hindustani tabla recital by our next artist, Ashok Kumar Moitro. Tal, Teen Tal. The accompanying artist is Prashant Singho on the harmonium. Listen then to a tabla solo in Teen Tal. Our artist is Ashok Kumar Moitro.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे तबला वादन, ताल तीन ताल, कलाकार थे अशोक कुमार मोइत्रा। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे प्रशांत सिन्हा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की प्रस्तुति थी। रागम 2400 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a Hindustani tabla recital in Tintal performed by Ashok Kumar Moitro. Accompanying the artist was Prashant Singh on the harmonium. This program was recorded and produced in the studios of Audio Radio Kolkata for the Ragam channel. Anytime, Indian music, 24/7.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज के कार्यक्रम में सुनते हैं वायलिन वादन। कलाकार है अतुल कुमार उपाध्याय। प्रारंभ में आपने वायलिन पर प्रस्तुत किया राग बैरागी भैरव सुनते हैं। विलित गत

ताल में निबद्ध है और द्रुतगत एक ताल और त्रिताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है माधव मोड़क। तो आइए सुनते हैं वायलिन पर राय रागी भैरव, कलाकार अतुल कुमार उपाध्याय।

श्रोताओ, अभी आपने सुना अतुल कुमार उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत वायलिन पर राग बैरागी भैरव। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं वायलिन पर राग धुवंती, कलाकार अतुल कुमार उपाध्याय। विलंबित गत 6 ताल में निबद्ध है और द्रुत गत 3 ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है माधव। तो आइए सुनते हैं वायलिन पर राग मधुवंती, कलाकार अतुल कुमार उपाध्याय।

श्रोताओं, अभी आपने सुना वायलिन पर राग मधुवंती। कलाकार थे अतुल कुमार उपाध्याय। आपके साथ तबले पर थे माधव मोड़क। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग नटभैरव में आलाप जोड़ और झाला. विलंबित और द्रुतगत तीन तालमनी बद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है हसीन अहमद खाने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ सितार रिसाइटल बाय सुनीरा कासलीवाल. She is accompanied on the tabla by Haseen Ahmad Khan. You will first listen to Rag Nat Bhairav, in which you will hear Alap, Jod and Jhala, followed by Vilambit and Drutgat set to Teen Tal.

0: अभी आप सुन रहे थे सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग नट भैरव। तबले पर आपकी संगति की थी हसन अहमद खान ने। और लीजिए अब सुनिए राग शुद्ध सारंग में आलाप। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है हसीन अहमद खान ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग नट भैरव। सुनीरा कासलीवाल नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग शुद्ध सारंग in which you will hear the alap followed by vilambit and drutgat set to teen taal.

0: तबले पर आपकी संगति की थी हसीन अहमद खान ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग शुद्ध सारंग वी कम टू द एंड ऑफ द सितार रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय सुनीरा कस्तिवाल। शी वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय हसीन अहमद खान। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

ಮಗ ಸದ ಗಸ

धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel।
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज के कार्यक्रम में सुनते हैं सुंदरी वादन, कलाकार यशवंत जाधव। आपने सुंदरी पर प्रस्तुत किया राग हंसध्वनि सुनते हैं। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है शंकर कुंभार। तो आइए सुनते हैं सुंदरी पर राग हंसध्वनि, कलाकार यशवंत जाधव।

श्रोताओं सुन रहे थे सुंदरी पर राग हंसध ध्वनि। आपके साथ तबले पर थे शंकर कुंभार। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सुंदरी पर राग मदमात सारंग, कलाकार यशवंत आधव। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है शंकर कुंभार। तो आइए सुनते हैं सुंदरी पर राग मदमात सारंग, कलाकार यशवंत जाधव।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुंदरी पर राग मदमात सारंग। कलाकार थे यशवंत जाधव। आपके साथ तबले पर थे शंकर कुंभार। ये आकाशवाणी पुणेन्द्र की निर्मिति थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं सनातन गोस्वामी। अवंती भट्टाचार्य अपने गायन का आरंभ खमास ठुमरी से कर रही हैं, तो आइए सुनते हैं ये खमास ठुमरी। कलाकार अवंती भट्टाचार्य।
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। This evening, we present Hindustani vocal recitals followed by a Hindustani instrumental recital. Listen to a Khamaj Thumri followed by a Bhairabi Dadra. Our artist this evening is Avanti Bhattacharya. Accompanying our artist on the tabla is Tarun Roy and on the harmonium is Sanatan Goswami. Listen now to Khamaj Thumri. Our artist, Avanti Bhattacharya.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ठुमरी और दादरा. कलाकार हैं अवंती भट्टाचार्य.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये खमास ठुमरी सुन रहे थे। कलाकार थी अवंती भट्टाचार्य। अवंती भट्टाचार्य अपने गायन का क्रम जारी रखते हुए अब प्रस्तुत कर रही हैं भैरवी दादरा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये भैरवी दादरा, कलाकार अवंती भट्टाचार्य।
1: यू वर लिसनिंग टू खमाज ठुमरी। Our artist was Avanti Bhattacharya. Accompanying our artist on the tabla was Tarun Roy and on the harmonium was Sanatan Goswami. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. We now present Bhairabi Dadra. Our artist is Avanti Bhattacharya. Accompanying her is Tarun Roy on the tabla and Sanatan Goswami on the harmonium. Listen now to Bhairabi Dadra, our artist, Avanti Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप भैरवी दादरा सुन रहे थे। आज की कलाकार थी अवंती भट्टाचार्य। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सनातन गोस्वामी। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। यह है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विष्णु ताल और धमार ताल में तबला वादन। आज के कलाकार हैं पंडित सोहन लाल मिश्र। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं सनातन गोस्वामी। पंडित सोहन लाल मिश्र अपने तबला वादन का आरंभ विष्णु ताल से कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं विष्णु ताल में तबला वादन, कलाकार पंडित सोहन लाल मिश्र।
1: यू आर लिसनिंग टू भैरवी दादरा। आवर आर्टिस्ट वॉज अवंति भट्टाचार्य। Accompanying her was Tarun Roy on the tabla and Sanatan Goswami on the harmonium. Continuing the concert, we now present an instrumental recital. Listen to a tabla recital in Vishnu Tal. This will be followed by a dhamar. Our artist is Pandit Sohan Lal Mishra. Accompanying our artist is Sanatan Goswami on the harmonium. Listen now to the tabla in Vishnu Tal. Our artist is Pandit Sohan Lal Mishra.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप विष्णुताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित सोहनलाल मिश्र। पंडित सोहनलाल मिश्र अपने तबला वादन का समापन धमार ताल से कर रहे हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है धमार ताल में तबला वादन, कलाकार पंडित सोहनलाल मिश्र।
1: यू आर लिसनिंग टू द तबला इन विष्णुताल। Our artist was Pandit Sohanlal Mishra. Accompanying our artist is Sanatan Goswami on the harmonium. Listen now to Adhamar Tal. Our artist is Pandit Sohanlal Mishra.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप धमार ताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित सोहनलाल मिश्र। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सनातन गोस्वामी। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a tabla recital in Dhamar Taal. Our artist was Pandit Sohanlal Mishra. Accompanying our artist was Sanatan Goswami on the harmonium. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सारंगी वादन. कलाकार हैं सरदार खां, राग है जौनपुरी. विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. संगत कलाकार हैं तबले पर राम स्वरूप रतौनिया. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सारंगी रेसाइटल बाय सरदार खां. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग जौनपुरी. द एकॉम्पैनिमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय राम स्वरूप रतौनिया ऑन द तबला.

अब आप सुनेंगे सरदार खां का सारंगी पर बजाया राग गांधारी, तबले पर संगत की है हफीज खां ने। नाउ लिसन टू द राग गांधारी बाय सरदार खां ऑन द सारंगी। तबला अकॉम्पैनिमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय हफीज खां।

आप सुन रहे हैं सारंगी वादन, कलाकार हैं सरदार खां। यू आर लिस्निंग टू हिंदुस्तानी सारंगी रिसाइटल बाय सरदार खां। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे दादरा धुन। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स अ दादरा धुन।

0: Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत. आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वागता मुखर्जी का शास्त्रीय गायन. सर्वप्रथम प्रस्तुत है राग जोगिया. विलंबित तीन ताल के बोल हैं भजले गुरु का नाम मनवा. तबले पर संगत कर रहे हैं पार्थो प्रतिम दास तथा वॉयलिन पर संगत कर रहे हैं भानु प्रताप बनर्जी.

अभी आप सुन रहे थे स्वागता मुखर्जी द्वारा गाया राग जोगिया। तबले पर संगत कर रहे थे पार्थ प्रतिम दास तथा वॉयलिन पर संगत कर रहे थे भानु प्रताप बनर्जी। अब प्रस्तुत है इन्हीं का गाया राग छायानट। विलंबित एक ताल के बोल हैं एरी अब गुथला और द्रुत तीन ताल के बोल हैं प्यारी लगली लाडली।

अभी आप सुन रहे थे स्वागता मुखर्जी का गाया राग छायानट। अब प्रस्तुत है इन्हीं का गाया राग देश। झप ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं, देखो रीना माने श्याम। तबले पर संगत कर रहे हैं पार्थ प्रतिम दास तथा वॉयलिन पर संगत कर रहे हैं भानु प्रताप बनर्जी।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे स्वागता मुखर्जी द्वारा गाया राग देश। तबले पर संगत कर रहे थे पार्थ प्रतिम दास तथा वॉयलिन पर संगत कर रहे थे भानु प्रताप बनर्जी। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है राजेंद्र सिंह का गाया राग तोड़ी. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं लाल मनाए और तीन ताल में निबद्ध द्रुत रचना के बोल हैं अल्लाह जाने अल्लाह जाने. तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present for you a vocal recital by Shri Rajendra Singh. He is accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami. Shri Rajendra Singh first presents Rag Todi, in which he sings the Vilambit Khayal set to Ektal. The lyrics are Lal Manai. This will be followed by a composition in Drut Khayal set to Tintal. The lyrics of this composition are Allah Jane, Allah Jane.

0: अभी आप राजेंद्र सिंह का गाया राग तोड़ी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। और लीजिए अब सुनिए राजेंद्र सिंह का गाया राग अलैया बिलावल। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है। बोल हैं दैया कहाँ गए वो लोग। और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। बोल हैं लाडली लाल फूले आवत। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: दैट वॉज राग तोड़ी कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल। श्री राजेंद्र सिंह नाउ प्रेजेंट्स राग अलैया बिलावल इन विच ही सिंग्स फर्स्ट अ ख्याल सेट टू विलंबित एकताल। द लिरिक्स आर दैया कहाँ गए वो लोग। दिस विल बी फॉलोड बाय द छोटा ख्याल सेट टू द्रुत तीन ताल। द लिरिक्स आर लाडली लाल फूल आवत।

0: अभी आप राजेंद्र सिंह का गाया राग अलहैया बिलावल सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग अलहैया बिलावल वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम विच फीचर्ड अ वोकल रिसाइटल बाय श्री राजेंद्र सिंह। He was accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami. This was a presentation of All India Radio Delhi.